नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि

कि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है, जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदि हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है? ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए, जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, गिल्ट की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज ये है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि

0: कई बार से प्यार अपनापन मिल रहा है तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दें और उसे ये यकीन दिलाएं कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डालें। नियमित रूप से उसे बात करते रहे ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ഇനി ഒരു ഗാനം ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് എം ജി ശ്രീകുമാർ സ്വന്തം സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ പാടിയതാണ് ചിത്രം അർദ്ധനാരി. രചന പഴയിടം സോമശേഖരൻ.

0: मिला तू इस एल्बम का गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार अपूर्व थे।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
1: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
5: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, जिंदगी की जुबान। इस एल्बम का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, संदीप गुप्ते ने इसे लिखा है, महेश खानोलकर ने इसे संगीतबद्ध किया है और आवाज है पद्मश्री पद्मजा फैनानी जोगलेकर की।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। द मॉर्निंग सन इस एल्बम से अब आपको गजल सुनवाते हैं सुरेश वाडकर की आवाज में। इस गजल के रचनाकार हैं रविंद्र जैन और धुन भी रविंद्र जैन की।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
3: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। खिलेश शर्मा ने इस गीत की रचना की है, संदेश सांडिल्य ने धुन बनाई है।

हे प्रेम एल्बम का नाम है ये, और आवाज और साथ ही संगीत मिलिंद इंगले की, रचना की है श्याम अनुरागी ने।

0: द लेटेस्ट जगजीत सिंह और चित्रा सिंह गजल एल्बम से ये गजल आपको चित्रा सिंह की आवाज में हमने सुनवाई। गीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, सुदर्शन फाकिर।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा साया साथ होगा।
0: तन्हा दिल इस एल्बम का गीत, आवाज शान की, राम संपत का संगीत।

अली गनी का संगीत पर किया गीत हमने आपको सुनवाया हंसराज हंस की आवाज में झांझरिया एल्बम से, और ये गीत बना कार्यक्रम रंग तरंग की आखिरी प्रस्तुति। इसी के साथ डीजे आ गया, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: Tarang. अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत 100 डेज फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। दिलीप ताहिर का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम की पुण्यतिथि पर हम यादों की महफिल कार्यक्रम में उन्हें याद कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के गाए गीत। अगला गीत हसन कमाल ने इस गीत को लिखा है, नौशाद ने संगीतबद्ध किया है, गाया है एसपी बालसुब्रमण्यम ने। तेरी पायल मेरे गीत फिल्म का नाम।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम यादव की महफिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को। रोजा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं एसपी बालसुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और ए आर रहमान ने संगीत पर किया है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
5: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
7: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
5: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। एसपी बालासुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अगला गीत समीर के बोल आनंद मिलिंद का संगीत, फिल्म का नाम प्रेम कैदी।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: 10, 9, 8, 7
2: हम आपके हैं कौन।

यह है फिल्म का नाम, लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजें। रविंद्र रावल का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
3: और
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया

0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस वक्त साजन फिल्म का गीत, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

पत्थर के फूल फिल्म से गीत अभी हमने आपको सुनवाया। अगला गीत सुनवा रहे हैं हमसे है मुकाबला फिल्म से। पीके मिश्रा के का लिखा गीत है, यार रहमान का संगीत है और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज, साथ ही पल्लवी और उदित नारायण ने साथ दिया है।

एसपी बालासुब्रमण्यम पल्लवी और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीके मिश्रा ने इसे लिखा था, ए आर रहमान का संगीत था। हमसे है मुकाबला, ये था फिल्म का नाम। अब है कार्यक्रम का आखिरी गीत, मैंने प्यार किया। इस फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें, असद भोपाली का लिखा गीत, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: इसी गीत के साथ यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को याद करते हुए उन्हीं के गीत सुनाए कार्यक्रम यादों की महफिल में।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती। राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए, हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। तो श्रोताओं, आज हम 25 सितंबर को बात करने जा रहे हैं अभिनेता और निर्देशक फिरोज खान के बारे में, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। उन्हें याद करते हुए इन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं और हम उन्हीं फिल्मों में से कुछ गीत चुनकर ले आए हैं आपके लिए कार्यक्रम सुरीला सफर में।

चेहरे सिर्फ पर्दे पर नजर नहीं आते, पर्दे पर आते ही अपना एक अलग माहौल बना देते हैं। फिरोज खान भी कुछ ऐसे ही कलाकार थे। उनका अंदाज, उनका पहनावा, उनका आत्मविश्वास और उनकी वो खास स्क्रीन प्रेजेंस जैसे कैमरा उन पर ठहरना चाहता हो, उन्हें देखकर शायद उस दौर के दर्शक यही सोचते होंगे ये शख्स सिर्फ किरदार निभाने नहीं आया है, अपना अंदाज छोड़ने आया है। अभिनेता के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, तो निर्देशक और निर्माता के रूप में भी उन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं हम सभी को। आप बताइए उनके बारे में, आपने उन्हें जब पर्दे पर देखा तो आपने क्या महसूस किया?

हमारी आज की इबारत तो आपने हमारी विविध भारती के फेसबुक पेज पर पढ़ ही ली होगी, लेकिन फिर भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारी इबारत और टेक्स्ट। सुंदर लगती हो शायद इसीलिए नहीं कि सूरत इतनी हसीन है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारी चाहत भरी निगाहों में एक अलग अंदाज है। प्यार से प्यारे हो तुम, जब तुम ये कहती हो तो लगता है जैसे प्यार ने खुद कोई खूबसूरत नाम रख लिया हो। प्यार कहाँ किस्मत में होता है हर किसी के, ये तो बस एक खूबसूरत एहसास है जो किसी खुशनसीब दिल को मिला करता है। जब वफा साथ हो तो वही जिंदगी की सौगात बन जाती है। तुम्हारी शरारत से चेहरा चमकने लगा है, जवानी के दो दिन हैं, इन्हें यूं ही मुस्कुराने दो। चाहत भरी निगाहों से यूं ही देखते रहो तो शायद ये चमक और भी बढ़ जाएगी। देखो रंग लाई है संगत तुम्हारी, जैसे खिली हो कोई कली गुलजार की, और पहली ही मुलाकात के बाद ऐसा लगा जैसे ये यारानी हो सदियों पुरानी। तो फिर बताओ प्यार

जी हाँ श्रोताओं, ये हमारा जो प्रश्न है इसके बारे में आप ही को बताना है कि क्यों नहीं मिलता प्यार सभी को जिंदगी में। भेज दीजिए आपके कमेंट्स, हमें इंतजार है आपके संदेशों का। और ये बताइए कि अब जो गीत सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, किनकी आवाजें हैं इस गीत में और फिल्म का नाम भी आप बताएंगे। और ये भी बता दीजिए कि जो पूछा जा रहा है ना इस गीत में कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बताइए, लिख भेजिए अपनी जवाब

0: परमात्मा फिल्म का गीत है, लेकिन आगे आपको बताना है कि किनकी आवाजें हैं।
1: तुमने किसी से कभी प्यार किया है?

जी हाँ, हमारे सभी श्रोताओं के कमेंट्स आ गए हैं। हमने जो पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और किन्होंने गाया है, सभी ने सही जवाब दिया है। धर्मात्मा फिल्म का गीत है। मुकेश और कंचन की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मैं फिरोज खान साहब को स्टाइलिश आइकन कहूंगा। ये हमारे एक श्रोता का कहना है कि उनकी मस्त चाल, संवाद बोलने का दिलकश अंदाज, काउबॉय की इमेज वाले फिरोज खान साहब के क्या कहने। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान जी की अभिनय क्षमता बड़ी गहरी है, रोमांटिक, गंभीर, कॉमेडी, स्टाइलिश, सभी कुछ उनकी फिल्मों में पाया जाता है। उनको शत-शत नमन। बिल्कुल। एक और श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान हिंदी सिनेमा के ऐसे बहुमुखी कलाकार थे जिनका व्यक्तित्व उनकी फिल्मों की तरह ही बेहद आकर्षक और प्रभावशाली था। उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास, दमदार आवाज और अनोखी शैली ने उन्हें अपने दौर का विशिष्ट अभिनेता बनाया। वे केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि सफल निर्देशक और निर्माता भी थे। अपने आधुनिक अंदाज, बेबाक व्यक्तित्व और फैशन के प्रति खास पसंद के कारण वे लंबे समय तक दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। फिरोज खान ने अपने काम और व्यक्तित्व से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई जिसे आज भी याद किया जाता है। हमारे एक श्रोता हैं जो हमें हमारे द्वारा बजाई गई धुनों को जो हम साथ साथ बजाकर आपको सुनवाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी भेजी है। इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि बहुत ही प्यारे लगे फिरोज खान। साथ ही वो कह रही है कि प्यार कोई सोच समझकर किया हुआ फैसला नहीं होता, ये तो बस हो जाता है। कभी किसी की एक मुस्कान से, कभी उसकी बातों से, उसकी प्यारी सी आवाज से, उसके भोलेपन से, उसकी सादगी से, और कभी किसी बिना किसी वजह के भी कोई दिल के करीब आ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी से अपना बन गए। आज तो लोगों की एक ही पसंद दिख रही है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। फिल्म धर्मात्मा का ये गीत, जी हाँ, और ये हमने सुनवा दिया है, हमारे कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी ये गीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज यादों की महफिल प्रोग्राम बढ़िया गीतों से सजा था, सुरीला सफर में ऐसे गाने सुनने की चर्चा तथा सवाल जवाब की अपेक्षा करते हैं। आप सुनिए आगे ये गीत जो आज हमने शामिल किए हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में, आनंद लीजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते दिल बाग बाग हो गया, ऐसे खूबसूरत एहसास कभी जगाने के लिए मूड बनाना पड़ता था, आज शब्दों का ऐसा तिलिस्म देखने को मिला कि पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ापा पीछे छोड़ जवान हो गए। क्या बात है, अब ढूंढते हैं प्यार को, देखिए कहाँ मिलता है। आज तो गीतों की बहार होगी, उसी में दिल बहलाते हैं और एक अच्छी दोपहरी विविध भारती के संग बिताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको प्यार तो है ही विविध भारती के संग। और अब जो हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइएगा इस फिल्म का नाम।

सच्चा प्यार किसे कहते हैं ये भी साथ बताते चलिए। क्या आकर्षण भी सच्चा प्रेम दर्शा सकता है?

0: इस गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है, लेकिन इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत, ये हमने आपको बताया। और अब आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तो श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। और इस कार्यक्रम की ये खास बात है कि जो गीत हम चुनते हैं उससे ये कार्यक्रम बनता है सुरीला, लेकिन आपके संदेशों से बनता है सजीला। तो भेजते रहिए हमें आपके संदेश, हमें इंतजार है बेसब्री से आपके संदेशों का। अभी हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार में पढ़ना एक अतार्किक रोमांच है, एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी सामान्य और तर्कसंगत दुनिया में अलौकिक मानने के लिए प्रलोभित होते हैं। प्यार की भावना व्यक्ति के अस्तित्व की अनुभूति को जीवन के सभी पहलुओं में एक सर्वोच्च आनंद की अनुभूति से भर देती है। उन्होंने एक बड़ा ही प्रयास से बहुत बड़ा संदेश हमें भेजा है, विस्तार में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, फिर भी आपका संदेश हमने शामिल किया है कार्यक्रम में। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार तो कब, क्यों, कहां और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। माना कि किसी को देखा और वो दिल में उतर गया और प्यार हो गया, पर प्यार जब चेहरे पे झलकता है तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसकी एक नजर मिल जाए इतनी फरियाद, चाहत सचमुच निगाहों का ही खेल है। उनकी निगाह पड़े तो दिल खुश, न पड़े तो अपनी निगाहें उदास। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की यादों की महफिल सजी हुई है, यानी कि वो सुन रहे थे तब उन्होंने ये संदेश हमें भेजा। मेरा बहुत ही पसंदीदा गायक एसपी बालसुब्रमण्यम, उनकी जयंती, उन्हें याद किया जा रहा है और सुपरहिट गीतों से सजा हुआ इन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि जिंदगी की राह में जब कोई हम सफर मिल जाता है तो खामोश धड़कनों को भी एक नया साज मिल जाता है। तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कुराहट लाती है बाहर, जब तुम देखते हो तो थम जाता है संसार। मोहब्बत तो वो पावन दुआ है जो भगवान से मिलवाती है, सच्ची चाहत ही दिलों के सारे फासले मिटाती है। भुलाकर शिकवे गिले थाम लो हाथ, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जी हाँ, वो गीत कार्यक्रम का पहला गीत नहीं था, वो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि प्यार सिर्फ खूबसूरत चेहरे और बातों से नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई से भी पहचाना जाता है। मन में जरा सा भी संदेह अगर उठ जाता है तो प्यार प्यार नहीं मिल पाता और खो जाता है मिलने की बजाय।

जी श्रोताओं, बताते चलिए कि जब किसी से प्यार हो जाता है और वो हमारा साथी बन जाता है, तो आप उसकी तारीफ में क्या कहना पसंद करते हैं? कब आपने आखिरी बार तारीफ की थी उसकी और कैसे, ये बताइए।

जी हाँ, एक और गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म धर्मात्मा से। आवाजें फिर से मुकेश और कंचन की थी। इंदीवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम अपने आप में निर्मलता, शुद्धता, करुणा और असीम आनंद को समेटे हुए है, और यह वह चुंबकीय खिंचाव है जो इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के कण कण को एक सूत्र में बांध कर रखता है। आज के आधुनिक और व्यवहारिक दौर में भले ही प्यार के मायने और उसकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल गए हों, लेकिन इसका मूल स्वरूप आज भी वही है। प्यार का मतलब केवल किसी के ख्यालों में खोए रहना या पजेसिव होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहायक बनना है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। प्यार जीवन का वह खूबसूरत उपहार है जिसे जितना बिना किसी स्वार्थ के बांटा जाए, यह उतना ही गहरा और अनंत होता जाता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, हमने आपसे पूछा कि आपने कब आखिरी बार अपने साथी किया जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तारीफ की थी, वो बताते चलिए। हालांकि खूबसूरती की तारीफ ना की जाए तो कैसे चलेगा? हर खूबसूरत चीज की, अंदाज की, व्यवहार की, बात की या किसी खूबसूरत इंसान की तारीफ तो कर ही देना चाहिए, खासकर जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी तारीफ में कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो बताइए आपने कब की थी तारीफ उनकी जिन्हें आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी एक श्रोता कहती है कि तुम्हारी मौजूदगी से जिंदगी में एक अलग ही नूर है। शायद इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सादगी दिल को छू जाती है। जब तुम अपनी उन मासूम नजरों से देखते हो तो लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। प्यार कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसा पावन बंधन है जो दो सच्चे दिलों की धड़कन बन जाता है। जी हाँ, तुम्हारी इसी शरारत, जरा सी शरारत और वफा ने दिल को मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा लगता है मानो सदियों का कोई अधूरा ख्वाब आज तुम्हारे साथ मुकम्मल हो गया हो। बिल्कुल प्यार ऐसा ही एहसास दे जाता है। हमारे श्रोताओं ने हमें गीत भी लिखकर भेजे हैं, उनमें से कई गीत ऐसे हैं जो अभी तक जो बच चुके हैं वो भी शामिल हैं। आप आगे सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। और एक श्रोता कह रही है कि प्रेम का एहसास बड़ा सरल है मगर तकदीर के नियम बड़े जटिल हैं। यह बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। कभी कभी लगता है प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां भी कभी कभी बड़ी अराजक हो जाती हैं। वे किसी नियम को नहीं मानती और प्रेम टूट जाता है। इंसान इसी त्रिकोण में अपने अर्थ खोजता रहता है और प्रेम की यही खोज उसे

तान बनाती है एक सच्चा इंसान बहुत खूब। अब आ रहा है अगला गीत। क्या आपने किया ऐसा किसी के लिए कि वो कहे दिन तो दिन रात तो रात। भेज दीजिए हमें अपनी यादें, अपने संदेश।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म सफर मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान ये बता रहे हैं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो अपनी श्रीमती जी की तारीफ तो करता हूं और कहता हूं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, साथ ही साथ विविध भारती की तारीफ भी करता हूं। क्या बात है, ये तो बहुत जरूरी है, आखिर विविध भारती भी तो आपके जीवन का प्यारा साथी है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कुर्बानी, धर्मात्मा और अपराध जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। भव्य और बड़े बजट की फिल्में, उनकी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशन, भव्य सेट, बेहतरीन गाड़ियां और शानदार संगीत उनकी पहचान थे। एक श्रोता कहते हैं कि बहुत प्यारा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मुकेश ने गाया है। बिल्कुल। एक श्रोता कह रही है, प्यार में पसंद ना पसंद का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती सब कुछ अपनाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होता है। जी हाँ, प्यार तो ऐसा ही होता है। एक श्रोता कह रही है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे गीत बेहद लोकप्रिय गीत, भावुक गाना है, जिसे मुकेश ने अपनी जादुई आवाज दी है। जी हाँ। हमारे को श्रोता कह रहे हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, परंतु दोनों दिलों के बीच में ईमानदारी और विश्वास होना जरूरी है। प्यार जीवन में जरूरी है, तभी तो मैं अपनी धर्मपत्नी को यह गीत गाकर सुनाता हूँ। तेरी सूरत पर नहीं, मैं तेरी सादगी पे मरता हूँ। क्या बात है, तेरा साथ है तो इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। बहुत सुंदर। एक और श्रोता कह रहे हैं कि कंचन जो एक उभरती गायिका रही हैं, जब कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपने शबाब पर था, तभी उन्हें कुर्बानी, धर्मात्मा और कालिया जैसे फिल्मों में गाने का मौका मिला। कल्याण जी वी जी शाह के भाई बाबला शाह के साथ उन्होंने कई लोकगीत गाए, चटनी गीत उनका खूब चला था। बाद में बाबला शाह से कंचन ने शादी कर ली। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि तारीफ की हमने उस परमात्मा की जिसने ये सुंदर और प्यारा सा संसार बनाया, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान अपनी विशिष्ट शैली, अनूठे अंदाज, डैशिंग पर्सनालिटी के लिए बॉलीवुड के पहले स्टाइल आइकन और काउबॉय के रूप में जाने जाते थे। फिरोज खान स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश अभिनेता माना जाता था। उनके लेदर बूट्स, हैट्स, सिगार और वेस्टर्न लुक ने हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड सेट किया था। बिल्कुल। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें लिख भेजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी शादी के पहले मैंने पत्नी से एक साल प्यार किया, एक साल बाद हमारी शादी हुई। अब हमारी शादी को 40 वर्ष हो चुके हैं, हम आज तक प्यार कर रहे हैं। जी, प्यार तो करते रहिए। सफर फिल्म का गीत हमने आपको सुनवा दिया था मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे जुड़ी यादें हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये है नागिन फिल्म का गीत। भाई, हमने तो ये फिल्म बचपन में देखी थी और इसे देखने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप अपनी यादों के बारे में बताइए कि क्या आपने इस फिल्म को देखकर सोचा था।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा अपनी श्रीमती जी की तारीफ करता रहता हूं, खासकर आज जब जबलपुर में रिमझिम बारिश हो रही है और विविध भारती पर बेहतरीन गीत बज रहे हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, अदरक इलायची की चाय की डिमांड भी कर रहा हूं। क्या बात है।

कानों के काजल से, पांव की पायल से, जुल्फों के आंचल से पूछो। नैनों के काजल से, पांव की पायल से, जुल्फों के आंचल से पूछो। अपनी अदाओं से, इन गोरी बाहों से, तिरछी निगाहों से पूछो।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया था पर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मैंने कभी प्यार किया नहीं, अरेंज मैरिज किया और उनसे ही प्यार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है।

जी हाँ, तेरे मेरे याराने हो सदियों पुराने, जब प्रेम हो जाता है तो याराने कुछ ऐसे ही लगते हैं। फिल्म का नाम तो हमने आपको बता दिया था, बाकी जानकारी आप बता दीजिए कि किसने लिखा है इस गीत को, किसने संगीत बद किया है। और हमने आपसे पूछा था, देखिए हमने तो बचपन में देखी थी फिल्म, तो हम बड़े छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। फिल्म का वो खौफनाक रोमांचक अंदाज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बार एक नागिन को हमने एक्ट्रेस या एक्टर के रूप में देखा था। तो ये तो हमारी बात थी, हमने आपके अनुभव पूछे हैं, आपने भेजे हमें संदेश, देख लेते हैं हम। फिलहाल हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ पाने से नहीं पर उसकी यादों से भी प्यार किया जाता है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन से ओमान से सुन रहा हूँ। एक श्रोता हमारे फिलिपिन मनीला से सुन रहे हैं, और क्या बात है, हमारे कई श्रोता हैं जो देश के बाहर से भी हमें सुनते हैं विविध भारती को, और आनंद लेते हैं इन गीतों का। संदेश भेजने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की, जी हाँ, एक श्रोता कह रहे हैं कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी

कि करते हैं लेकिन सुनने को यह मिलता है कि आप तो काम बताओ क्या है। जी कभी कभी तारीफ करने से ऐसा भी लग जाता है, संदेह हो जाता है ना कि कोई काम ही होगा जरूर। वे बिना काम के भी प्यार जता देना चाहिए।

एक श्रोता कह रही है, क्या खूब लगती हो, हिंदी सिनेमा के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जहां धुनों में आत्मा और शब्दों में गहराई हुआ करती थी। इंदिवर ने प्रेम की मासूमियत और अमरता को सरल शब्दों में पिरोया है। सूरज होगा जब तक नील गगन में और प्यासे दिल को आज मिला है सागर जैसी पंक्तियां प्रेम के अटूट विश्वास और तृप्ति को दर्शाती है। यह कंचन के सबसे सफल गानों में से एक है। क्या बात है। एक श्रोता कह रही है, तब तारीफ मजबूरी हो जाती है, नहीं करने पर प्यार का नशा उतर जाता है। हमारी एक श्रोता हमसे साझा कर रही है कि क्या खूब लगती हो ये गीत हमने कैसेट में भी बहुत सुना और रेडियो पर भी बहुत। एक श्रोता कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत बच चुका है। जी बिल्कुल, बस आप आनंद लेते रहिए इस कार्यक्रम में। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फिरोज खान साहब की बहुत शानदार फिल्म रही है और इस फिल्म का पूरा फिल्मांकन अफगानिस्तान में किया गया था। पूरी एक टीम एक महीने से ज्यादा वहां पे रही थी। जी धन्यवाद ये बात साझा करने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि वाह क्या गलत फहमी है, दूसरा पहला और पहला दूसरा गीत क्या कहना चाहते हैं आप। एक श्रोता कहते हैं कि सांसें चलना जिंदगी की पहचान हो सकती है, पर उस जिंदगी में रंग और अर्थ भरने का काम प्यार ही करता है। प्यार इंसान को अकेलेपन के एहसास से बचाता है और हर मुश्किल मोड़ पर एक मुख संबल देता है। प्यार हमें सहानुभूति, दया और निस्वार्थ होना सिखाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो श्रोताओं, अब जो गीत आने जा रहा है, बताइएगा कि ये गीत गाया किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है, साथ ही फिल्म का नाम भी आप ही बताएंगे।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जी हाँ, अभी हमने आपको गीत सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि कौन सी फिल्म का गीत है, किसने संगीतबद्ध किया है, किसने लिखा है, और आपने जवाब भेजे हैं हमें बिल्कुल सही। ऊंचे लोग इस फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया था, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, चित्रगुप्त का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सूरत का सौदा नहीं, दो दिलों के बीच वो खामोश ठहराव है जिसमें किसी और की मुस्कान तुम्हारी अपनी लगने लगती है, और हर किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब उसे ढूंढते तो हैं, पर निभाने का हुनर, झुकने की नरमी और ठहर कर देखने की नजर सबके पास नहीं होती, और जिंदगी में वो इसीलिए जरूरी है कि जिस्म तो रोटी कपड़े से चल जाता है पर रूह तब ही खिलती है जब कोई चाहत भरी निगाह से देखे, कोई वफा के साथ पास हो, वरना जिंदगी गुजर जाती है पर गुलजार नहीं होती। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और साथ ही आपने कुछ गाने भी लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने कहा है, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं विविध भारती से, वो भी कई सालों से। जी, विविध भारती से तो आपका प्यार चलते ही रहना चाहिए।

एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे अपने समकालीन हीरोइनों में लोकप्रिय थे, यानी कि वो फिरोज खान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हीरोइनों ने अभी भी उनके बारे में ये कहा है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस दिल से महसूस किया जाता है। जहां दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल का जुड़ाव, एक दूसरे की फिक्र कभी कम नहीं होती। सच में खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा पवित्र और सच्चा प्यार नसीब होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। यहाँ सच्चे प्यार की ही सच्चाई बताई जा रही है, और यह सच्चा प्यार वैसे तो अनिर्वचनीय होते हुए मुख फल आस्वाद ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है कि किंतु यह प्यार त्याग और समर्पण के दृढ़ दीवार से न झुकते हुए अपने विनम्रता के हथियार से समस्त संसार की झंझावतों से लड़ने में समर्थ भी होता है। क्या बात है, हिंदी के शब्दों का सुंदर उपयोग आपने अपने संदेश में किया है। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो होगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। बता दीजिए, हमने यही तो सवाल पूछा था आपसे हमारी इबारत के अंत में कि आखिर क्यों नहीं मिलता सभी को प्यार जिंदगी में। अब ये जो गीत सुनवा रहे हैं किसने गाया है ये बता दीजिए।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीला सफर सुरीला धड़कन कार्यक्रम में फिर से प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से यह बात सामने आती है कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक फिरोज खान की फिल्मों की ही बात हुई है स्मृति दिवस पर। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, उन्हीं के गीत आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए।

कभी कभी दो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, साथ रहना भी अच्छा लगता है, बातचीत में मिठास भी होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार जन्म नहीं लेता। शायद इसलिए हर किसी को जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी का मिल जाना नहीं, प्यार है किसी के साथ अपने मन की वो जगह बांट लेना जहां हम बिना किसी दिखावे के अपने सबसे सच्चे रूप में रह सके। जी हाँ, तो आज आप सभी के संदेशों के लिए, सभी जानकारियों के लिए और हमसे अपनी यादों को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से अब इजाजत लेती हूँ मैं, पूजा नारायणिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: वो है एक विलक्षण। अच्छा ये आज के मेहमान ना, तारीख क्या होगी? आज के मेहमान 30 सितंबर 4 बजे सिर्फ विविध भारती। हाँ ठीक है। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा। आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिर से पूरा फिर से ओके। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा। आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ठीक है।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम सबकी जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है, बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। तो आइए आज की इस खूबसूरत मुलाकात में कुछ बातें दिल से करें जो दिल तक पहुँचे, कुछ अनुभव साझा करें और शायद उन बातों में से किसी की एक छोटी सी बात किसी दूसरे के दिन को बेहतर बना दे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ, आपकी आवाज और आपकी बातें इस कार्यक्रम को बनाती हैं खास। तो देखते हैं जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मध्य प्रदेश से, अंजुम परवीन मंदसौर जिले से।
0: अच्छा, तो अंजुम जी बताइए कुछ अपने बारे में, बताएंगे आप पहले?
1: बस हाउस वाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ। पेरेंट नर्स का कोर्स कर चुकी हूँ, हॉस्पिटल में सर्विस।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है, परिवार में?
1: जी मम्मी है, बहन है।
0: ये बताइए कि आप मम्मी के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाती हैं कि नहीं, या फिर मम्मी गुस्सा करती हैं?
1: नहीं नहीं, मम्मी आटा गूंथती है तो रोटी बना देती हूँ, सब्जी मम्मी बनाती है, बर्तन वर्तन कर देती हूँ, कपड़े
0: ये चीज तो होनी चाहिए।
1: सर्विस करती है तो फिर घर का काम करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, और क्या, थोड़ा बहुत हाथ बटाना भी चाहिए वैसे भी, है ना? मम्मी अगर घर का काम कर रही, कोई भी कर रहा हो, चाहे बहने भी कर रही हूँ या कोई भी कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत हम अगर हाथ बटा देते हैं तो थोड़ा काम आसान हो जाता है और लगता है मम्मी को, हाँ मेरी बेटी देखो मेरे काम में हाथ बटाती है। अच्छा बताइए तो आप आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: जी फिल्म है उस्ताद ही उस्ताद से, और गाना है साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कट जाएंगे।
0: तो चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ जी मैडम।
0: आज कौन? हाँ जी, कौन सी सहेली से मेरी बात हो रही है पहले ये तो बताइए।
1: हाँ मैं मकवाना रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: अच्छा,
1: इंदरपुरा गांव से।
0: तो बताइए रमीला बेन जी कि आप क्या करती हैं?
1: अभी तो मैं घर पे हूँ, मगर अगली बार फोन लगा, बोला मेरे बेटे का बर्थडे है ना, तो मैं बोली गीत सुना।
0: अच्छा अच्छा, तो आपके बेटी का बर्थडे आज। तो बहुत
1: हाँ।
0: बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी गुड विशेज हैं हमारी तरफ से, शुभकामनाएं हैं आपके बेटी के लिए।
1: हाँ।
0: तो रमीला बेन जी, जी बताइए। हाँ
1: बेटी का नाम है आरती।
0: हाँ, अच्छा आप ये बताइए कि आपके जो बेटी हैं और बेटे हैं, आपके काम में, आपके घर के काम में थोड़ी बहुत हाथ बटाते हैं कि नहीं?
1: अभी ये लड़की तो मेरी 30 साल की हुई, मगर मन बुद्धि चलती नहीं ऐसी है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और लड़का है ना, वो तो अभी शादी हो गई, लड़की है, सिटी में रहता है बड़ौदा में।
0: अच्छा अच्छा।
1: जॉब करती है लड़की की मम्मी।
0: अच्छा अच्छा।
1: और वो लड़का दोनों।
0: ये बताइए कि आपको कौन सी फिल्म का और कौन सा गाना सुनना है?
1: मुझे ये दिल का क्या कसूर का, ये पार्टी का।
0: अच्छा, आपकी पसंदीदा हीरोइन का। तो चलिए, आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से बात कर रही हूँ, राधिका कुर्मी।
0: तो राधिका जी, ये बताइए कि आप करती क्या है?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करती हैं, कौन सी क्लास में अभी आप?
1: कक्षा 9th में।
0: नाइन्थ में, यानी कि आप अभी 10th तक पहुंची नहीं है, तो 10th की तैयारी में है ना, तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है?
1: जी दीदी, दीदी हम दिव्यांग है, तो दीदी हम लोग संगीत सीखते हैं, तो दीदी वो इसी की तैयारी चल रही है बस। दीदी हम लोग दीदी चित्रकूट में पढ़ते हैं, वो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी है हमारे गुरु।
0: अच्छा अच्छा,
1: उन्हीं का एक विद्यालय है दीदी कक्षा 12वीं तक, तो वहीं पे पढ़ते हैं दीदी हम लोग।
0: अच्छा, तो संगीत के अलावा आपके पास और कौन कौन से विषय हैं?
1: हम लोगों को संगीत है, बाकी ये है हिंदी है, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, पर मेन जो हम लोगों के सब्जेक्ट रहते हैं दीदी वहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे जिस चीज का मतलब जिन व्यक्ति का जिस चीज में रुचि होती है दीदी।
0: ये
1: वही
0: तो
1: चीज सबसे ज्यादा सिखाते हैं दीदी।
0: अच्छा
1: दीदी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी वेद भारती टीम को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी जी।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मूवी का नाम है दूध का काज और गाने के बोल है बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, हम कठिना बनो, हम कर्नाटक चिकमंगलूर से।
0: अच्छा अच्छा,
1: सबसे भी सखी सहेली, हेलो सहेली, छाया गीत, वो सब सुनती हमें।
0: अच्छा, आपको किसी चीज से डर लगता है क्या? कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा?
1: नहीं डर लगता।
0: नहीं क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता
1: है। नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं, नहीं डरती मैं।
0: नहीं,
1: मुझसे भी नहीं डरती, छिपकली से भी नहीं डरती।
0: अरे वाह,
1: किसी से भी नहीं डरती।

0: शिवाय अल्लाह के
1: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: ना, नहीं डरते वो, क्योंकि डरते ही वो बहुत जने डरते
1: हैं, क्योंकि कभी सफाई करते हैं ना घर में,
0: डरती में
1: जी है ना।
0: हाँ,
1: तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, कौन से फिल्म का?
0: आप तो ऐसे न थे, हाँ तू इस तरह से मेरी जिंदगी में।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी पसंद है आपकी,
0: शुक्रिया हमारी फरमाइश,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी मेरा नाम शिवाती, गांव गोसगढ़, जिला शामली, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ।
0: तो ये बताइए आपके फैमिली में कौन कौन है? परिवार में?
1: जी परिवार में मम्मी, पापा, भैया, भाभी, एक भतीजा।
0: अरे वाह, भतीजे के साथ खेलती हैं आप?
1: हाँ जी, अभी तो स्कूल गया।
0: अच्छा, छोटा है कि थोड़ा बड़ा है? बहुत छोटा है कि
1: बड़ा? नहीं छोटा, अभी तो छोटा ही है।
0: अच्छा, तो खूब खेलती होंगी फिर तो, मजे आते होंगे ना?
1: हाँ जी,
0: भतीजे के साथ में खेलने में। अच्छा ये बताइए, आप किसी चीज से आपको डर लगता है? कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है बहुत ज्यादा?

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके शहर का नाम क्या है।
1: तारीफ कैसे करें आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। यानी आपको हमारी बातों में गुलाब की खुशबू आ गई है ना?
1: जी, हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदाना का, इंदौर से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हसीना जी। और ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैं सिलाई करती हूँ मैडम, जॉब करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा हसीना जी, आप ये बताइए कि आपको ऐसी कोई चीज है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो?
1: नहीं, ऐसा तो कोई चीज नहीं मैडम जिससे डर लगे अपने को।
0: आपको
1: अगर निडर रहेंगे तो, अगर अपने सामने का खतरा भी आएगा, निडर रहेंगे तो डर नहीं लगेगा।
0: मेरा मतलब था आपको कभी छिपकली से, मेंढक से।
1: छिपकली से तो बहुत डर लगता है मैडम, किसी
0: यही
1: लगता
0: तो
1: है।
0: मैं
1: और महिलाओं को तो अधिकतर लगता है, कॉकरोच दिख जाएगा उससे भी डर जाती हो तो।
0: वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपको इन सब चीजों से डर लगता है कि नहीं, जो अधिकतर लोगों को लगता है।
1: लगता है ना मैडम, छिपकली ऐसे घर में दिख जाती है तो अपने को लगता है कि अपने ऊपर ही नहीं आ जाए एकदम।
0: बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि कभी आप सफाई कर रही हो और अचानक से छिपकली निकल आए, तो आप क्या करती हैं फिर?
1: सफाई करते ना मैडम, अधिकतर तो निकलती है छिपकली, कहीं भी छुपी रहती है वो, तो ऐसे दिखाई नहीं देती। मगर जैसे अपन ने कोई तस्वीर हटाई साफ करने के लिए, तो उसके पीछे तो जरूर रहती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी लगी हुई होती है ना बहुत दिनों से, तो उसको हटाते हुए भी डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको हम हटाए और इसके पीछे छिपकली हो, है ना? लगता है ना
1: जी। तो इसके ऐसा करने तो मैडम, झाड़ू बड़े वाली रहती है ना जो लंबी वाली, उससे थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे करके खिड़की के बाहर कर देते हैं उसको।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी करने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि भाई इतना आपको निडर होना चाहिए कि छिपकली को आप भगा सकें, क्योंकि जल्दी जाती भी नहीं है, कभी इधर छुप जाती है कभी उधर छुप जाती है, है ना?
1: वो जिधर भगा उधर तो जाती नहीं, वापस अपने तरफ ही आती है।
0: सच में ना, थोड़ी देर के लिए काम जो हम कर रहे होते हैं ना वो भी बंद हो जाता है।
1: जी जी।
0: तो आप ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का?
1: ये फिल्म का नाम है राम बलराम और गाने के बोल हैं अच्छा कहो।

0: चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमका सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो।
1: अरे आपसे आपसे कोई भूल नहीं हुई है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले तो कि आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैम ग्राम कन्यानी घर से कामिनी हैदराबाद।
0: अच्छा तो कामिनी जी ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैम कुछ नहीं कर रही, पढ़ाई करती हैं मैम।
0: पढ़ाई करती हैं
1: मैम जी, कक्षा सातवीं में।
0: अच्छा सेवेंथ में आप, यानी कि अभी तो बहुत मतलब अभी अब टेंथ तक पहुंचने में काफी टाइम है आपको, तो अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए आपको कौन से विषय आपको बहुत ज्यादा पसंद है पढ़ने में?
1: मैम जी हमें, मैम जी कुछ नहीं, खाना बनाए बहुत मजा आता है।
0: खाना बनाना अच्छा लगता है। तो अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती?
1: मैम जी पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: कौन सी फिल्म का है?
1: सर्वप्रथम मूवी का।
0: यानी कि आपको फिल्में देखने का और गाने सुनने का बहुत शौक है ना?
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं अनुराधा शर्मा बोल रही हूँ, जालना महाराष्ट्र से।
0: तो अनुराधा जी बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है सब?
1: हमारी सासू माँ है, ससुर है, मेरी दो बेटियाँ हैं।
0: अच्छा,
1: प्रियंका, अंकिता।
0: अच्छा, तो बेटियाँ बड़ी हैं कि छोटी?
1: हमारे घर वाले राधेश तिवारी।
0: अच्छा,
1: अभी एक कॉलेज जाती है, एक स्कूल जाती है।
0: अच्छा,
1: नहीं, चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही
1: आपके रेडियो के प्रोग्राम, हमें बहुत खुशी है, आज 20 साल के बाद फोन लगा।
0: अरे वाह, इतने समय से आप कोशिश कर रही थी।
1: हेलो फरमाई सुनते हम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: सखी सहेली, हेलो सहेली।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको गीतों वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जिसमें बातचीत होती है वैसे वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं?
1: हाँ, बातचीत वाले ज्यादा।
0: अच्छा, तो आप जैसे सखी सहेली सुनती हैं आपने कहा, तो उसमें जो रेसिपी वगैरह या इस तरह की चीजें बताई जाती है, तो आप क्या उसको बनाती हैं घर पे?
1: हो, कभी ट्राई कर दे, संडे के दिन आइए आप भी खाने को।
0: और ये तो बताइए आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं?
1: इडली बनाते हम ज्यादा, इडली डोसा।
0: अरे वाह, इडली डोसा, मतलब ये रहता ना कि एकदम हल्का भी होता है खाने में, सुपाच्य भी होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है ना, अच्छा होता है खाने
1: में।
0: ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आरती सुना दिए गणपति बप्पा की।
0: अच्छा, गणपति बप्पा का आपको गीत सुनाते हैं, तो चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: प्रतापगढ़ गांव है मेरा, बासी जगेशगंज।
0: तो
1: मेरा नाम रीना देवी मौर्य है।
0: अच्छा, तो रीना देवी जी ये बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम जी मैं यही सिलाई उलाई से अपन करती हूँ घर पर।
0: अच्छा, तो आप घर से ही काम करती हैं सिलाई का, है ना?
1: हाँ,
0: तो आप क्या क्या सिल लेती हैं, क्या क्या सिलती हैं?
1: ब्लाउज पेटीकोट यही सब सिलती हूँ।
0: अच्छा, तो आप महिलाओं के कपड़े सिल लेती हैं अच्छे तरीके से। तो ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हम हैं, दो बेटे हैं।
0: अच्छा, तो बेटे छोटे हैं कि बड़े?
1: नहीं मैम जी, एक 12 में पढ़ता है, एक हाई स्कूल में।
0: अच्छा, यानी छोटे ही हैं। पढ़ाई तो अब इस समय काफी अच्छे से करनी पड़ रही होगी क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह भी होंगे, है ना? तो ये बताइए हाँ। आपके दोनों बेटे हैं तो क्या बेटे काम में कुछ हाथ बटाते हैं घर के?
1: हाँ मैम जी, एक रहता है दुकान पर रहता है, तो हम अपना काम घर पर कर लेते हैं और उसके बाद स्कूल चला जाता है, तो स्कूल से रहता है। अच्छा, अभी 2 बजे आएगा गए।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब काम में भी हाथ बटाते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि सिंसियर हैं बच्चे। तो ये बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप थोड़ा बहुत खाली समय में होती हैं, तो आप क्या करती हैं?
1: बस मैम जी अपन सिलाई का काम करते हैं, गाना सुनते रहते हैं।
0: गाना सुनती हैं? तो ये बताइए हाँ। आपको कौन कौन से, आप जो ये विविध भारती सुनती होंगी तो आपको कौन कौन से इसके कार्यक्रम है अच्छे लगते?
1: तो जब समय पा जाते हैं तब अपन मोबाइल पे चला देते हैं, वही सुनते रहते हैं, सिलाई करते रहते हैं।
0: हाँ, यानी कि आपका जो काम है वो आसान हो जाता है ना करना?
1: हाँ, काम करते रहते, खाना बनाते हैं तब भी चला लेते हैं, सुनते रहते हैं और अपना सुनते रहते हैं।
0: यही तो खूबी है ना संगीत की और विद भारती की, कि मतलब आपका जो काम है उसको आसान बना देता है ना। आप सुनते रहिए उसको और अपना काम करते रहिए तो पता नहीं चलता है कि हम कितनी देर से काम कर रहे हैं।
1: हाँ, अपना गाना सुनते रहो, अपना काम करते रहो।
0: तो ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं अपने मन का?
1: मैम जी राजा हिंदुस्तानी का आए हो मेरी जिंदगी में।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा गीत है। तो सुनाती हूं आपको आपकी पसंद का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम
0: तो बताइए, पहले आप कौन से शहर से बोल रही हैं और आपका खुद का नाम क्या है?
1: जी मैडम, मेरा नाम सीमा सोलंकी है और मैं उज्जैन जिले के गांव ताजपुर से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, आप उज्जैन से बोल रही हैं। उज्जैन यानी
1: हाँ।
0: कि महाकाल की नगरी भी कहा जाता है जिसे, है ना?
1: उज्जैन का गांव है, ताजपुर कहते हैं गांव।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है। आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैडम, मैं तो खेती बाड़ी का काम करती हूँ।
0: अरे वाह, खेती बाड़ी का काम करती हैं, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है, समझिए, है ना?
1: हाँ, बहुत मेहनत का काम होता है।
0: तो मतलब आप सुबह से निकल जाती होंगे, है ना? सुबह जाना होता होगा
1: हाँ,
0: आपको।
1: सुबह से खाना वाना बना के, मतलब है घर से खाना वाना बनाने वाले, और भी दो बेटियां हैं।
0: तो बेटियां बनाती हैं, काम करती हैं घर का?
1: हाँ, बेटियां भी मदद करती हैं, और खेत पे आके फिर मजदूर को खाना वाना, उनका चारा निराव पानी करके फिर
0: हाँ,
1: खेत का काम करते हैं।
0: फिर आपको एक चीज होती ना कि वहाँ खेत पे जाकर खाना खाना, सच में ऐसा लगता है ना
1: हाँ, खेत
0: सोच
1: पे
0: के।
1: खाना भी खेत पे ही खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना जब
0: हाँ
1: भूख लगती है तो फिर लोग घर का वही खा लेते हैं।
0: हाँ तो वहाँ पे आप खेत में अपना खाना लेकर जाती होंगे, है ना?
1: हाँ, खेत पे कुआं है तो उसमें से पानी आने भर के वही खाना खा लेते हैं।
0: वाह, कितना प्रकृति के पास रह रही हैं आप, सोचिए, ये भाग्य की बात है एकदम, जो प्रकृति के इतना करीब रहने को मिल रहा है आपको। वैसे भी ना खेत पे जाकर, वहाँ पे खुले में एकदम खुला खेत है, वहाँ पे सब फसलें लगी हुई हैं वहाँ, है ना?
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: आप
1: लगता है
0: बैठ के
1: खेत
0: खाना
1: पे
0: खा रहे
1: तो।
0: हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना
1: हाँ, ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे भी हैं और
0: साथ में
1: फसलें
0: आपका
1: भी।
0: रेडियो सेट भी रखा हुआ है, आपके फोन भी आप सुन रहे
1: हाँ, मैं
0: हैं
1: अपने
0: विविध
1: फोन
0: भारती।
1: पे रेडियो भी सुनती हूँ।
0: हाँ, तो
1: हाँ,
0: ये
1: लगी है।
0: बताइए कि आपकी बेटियां पढ़ती हैं या?
1: जी मैडम, पढ़ती है अभी, दोनों कॉलेज कर रही है।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत
1: तीन
0: अच्छी बात
1: बेटियां हैं
0: है।
1: मेरी, तो तीनों बेटियां, अभी एक तो स्कूल कर रही है और दो कॉलेज कर रही है। जी,
0: यानी कि घर के काम में हाथ भी बटाती हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हैं।
1: 8 दिन में एक बार कॉलेज जाती है वो।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई भी करना और साथ में
1: पढ़ाई
0: अपने आप को,
1: भी कर रही है और मदद भी करती है। दो
0: नहीं सच में बहुत अच्छी बात है ये।
1: बेटा है उसके
0: तो बेटा कुछ करता
1: पापा।
0: है मदद?
1: हाँ, बेटा तो बेटा भी करता है सुबह शाम, वो भी कॉलेज कर रहा है
0: ये
1: और
0: सही बात है,
1: दुकान भी
0: बच्चों को
1: चलाते
0: सिखाना
1: हैं।
0: भी चाहिए ये सब चीजें कि आप पढ़ाई भी करो साथ में, थोड़ा सा हाथ भी बटाओ,
1: हाँ,
0: तो
1: साथ में
0: उससे
1: थोड़ा
0: जुड़ाव
1: बहुत मदद
0: रहता
1: भी करते
0: है,
1: हैं।
0: बहुत अच्छा रहता है ये।
1: हाँ, और उसके पापा तो है नहीं, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया,
0: हाँ,
1: तो बच्चे ही मदद करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, सब मदद करते हैं बच्चे आपस में। तो ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मैडम, वो चल अकेला मेरा मेला, पीछा छूटा साथी, चल अकेला सुनना।
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो है 4002 4662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए 4002 4662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867 0 2 8 8 और मुंबई का STD कोड है 022।

0: नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867 0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारे जिन भी सखियों का कॉल आज नहीं लग पाया वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाइए और अपनी सखियों को अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।